भाई योगा सिद्ध करना आवाज पई छत पौड़ी तू पै हेठा कीता पिछे मुड़ पे मना कोई तेन वेखदा पे वापस आ गई। थोड़ी देरी दे बाद प्यारी सत्संग भाई योगा से फिर आंदे फिर पौड़ी से पैर रखते हैं फिर कन्ना

निर्जीवड़े आप परवेश पवे जंजाले राम साचा साहेब मन मथे की फासे जमझाले राम मछली भी सुनी पर नैन रही मछली आटे की गोली भी लाल चिच अपना आप खत्म कर देंदी है। हे मेरे परदेसी जीवड़िया केड़े बहना च रह रहे हैं आपको भाई जोगा सिंह ने सोचिया अजे भी कोई मेनू वेख रहे है थोड़े समय के बाद हूं अमृत वेला हो गया कुसरी भाई भाई जोगा सिंह ने सोचिया मैं ना कोई नहीं तेनू वेखदा ए तेरे अपने मन के ख्याल हैं हूं चढ़ चल चबारे भाई जोगा सिंह पौड़ियां खानी चबारे से चढ़ गया जिते पौड़ियां खत्म हुई जिस वेले इतने पहुंचया तो सामने की तके प्यारी संगत इधर भाई जोगा सिंह पौड़ियां खानी चढ़िया जाता है ते इधर दशमेश पिता अनंतपुरी का वाली अमृत वेले समाधि भी जुड़े हुए आखोसी भाई जी अचानक ही नेत्र खोले एक रुड़ गया काम कुंड काम के सागर कोई है पहरेदार आ गया दयालु गुरु जी हुक्म करो हजूर कहन लगे खाकी वर्दी लियाओ लियांदी रेशमी वस्त्र पहन वाला माध गुजरी का लाल पंथ का दाता अज खाकी वर्दी पा लेंगे चांदी की चौंक भी लियाओ लियांदी हजूर अंतर ध्यान होए पहुंच गए जिस वेले भाई जोगा सिंह पौड़ियां खाणी उपर चढ़िया की तकिया सामने कोई सोने कद वाला हाथ भी चांदी भी चोब ते खाकी वर्दी पहन के सामने कोई सिपाही खड़ोता है आपको सिंह भाई भाई जोगा सिंह ने सोचिया मैं तो समझिया थी इस वेले कोई भी ना होगा पर एक कौन तो परसों से आ फिर सामने खड़ोते संतरी ने पहरेदार नेड़े होके कहा कि भाई तू कौन है अखोत्री भाई भाई जोगा सिंह नहीं बोले दूजी वेरी फिर पुछी है गर्दवी आवाज भाई जोगा सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिता तीसरी वेरी पहरेदार ने कहा भाई बोलता क्यों नहीं तू कौन है तू किधरे कलगिया वाले का सिखता नहीं आखो सी भाई तेरी शकल वाल वेखिया मैनू गुरु याद आंदा है पर तेरी करतूत वाल वेखिया मालूम होंदा तू कोई शैतान है आखो सी भाई भाई जोगा सिंह ने नजर नहीं कर दी पहरेदार ने कहा तेरे चेहरे के उत्ते गुरु की मोहर लगी हुई है फिर कलगिया वाले का सिख होके तू कितने आ गया भाई जोगा सिंह का नहीं बोले हम पहरेदार मुखातों के कहना की।

गया, याद है तेरी सूरत सादी, ओए कलमिया वाले दिया सिखा, याद है तेरी सूरत सादी, एक ही मन में पूरी उपाधि।

तो इनू नए की तार ही समझिए, पर नहीं कड़ा तो तेन उपदेश देना है कि भाई ये कड़ा ये गुरु की हथ कड़ी है, इन हथा च मैनू पाया है, इन हथा नाल पराए तन नू ते पराए तन नू मैं छेड़िया कुछ कड़े का कोई सिद्धांत है, इन लोहे की तार न समझ। कड़ा उपदेश देना है कि परधन पाहन तुल प्रिया परमात हमारे, कि मैनू पाया तेरी हथां कड़ा पाया होया, किथे कड़ा हथा च पाना, किथे कोल वेसवा जाना, फिर पहरेदार मुखातब की कहना है

तो जत वाल लंगोट तेनू गुरु ने दिता है। ये जेड़ी कट है ये जत वाल लंगोट है ते तू किहड़े पासे तुरे कछ लक दी मारे ताने एओ फेक तेरा सतगुरु जाने ओए पंजे कटके तार के तै झूठ बनाया था के जा सिखा कर अपने कर जबदी दा पाके अमरपेड़ा तो गुरबाणी नाल जुड़ना सी किधर आज पहरेदार दे बचन सुन के पाई जोगा सिंह जिन्हां पौड़ियां थाणी उपर चढ़िया सी तां उतर ऐसा है कोई दिन का ख्याल आ गया फिर पौड़ियां से चढ़ गई। अगे तो पहरेदार ने कुछ किया सी ए उपर पहुंचिया पहरेदार ने कहा मुड़ा आ गए हैं हां क्यों आए हैं दो गल्लां तेरे नाल करनियां कर की कहना चाहुंदा है। भाई जोगा सिंह ने कहा मैं इस वास्ते इतने नहीं आ सकता कि मैं गुरु का सिख हां पहरेदार ने कहा इस नरक कुंड विच पापी बंदे आउंदे इस बूहे दे उत्ते पहले बंदे आउंदे हन ते कलगियां वाले ने तो सिख नूं रोशन मुनारा बनाया है वो अनेरी क्यों गिरे इस वास्ते भाई गुरु का सिख इतने नहीं सौंदा। भाई जोगा सिंह ने कहा ठीक है जे मैं गुरु का सिखा इतने नहीं सौंदा फिर मेरी अखा धोखा नहीं खादिया तू भी ते गुरु का सिख जापदा तू इतने क्यों आया आखो श्री भाई जी उस वेले प्यारी संगत पहरेदार दे नेत्र फजल हो गए हैरान हो के भाई जोगा सिंह ने कहा कोई जरूरी ड्यूटी है पहरेदार ने कहा हां भाई ए तां मजबूरी दी ड्यूटी पे आ जांदा आखो श्री भाई जी मेरा कितनी खरत करता इसे खोने वास्ते पर मजबूरी दी ड्यूटी। भाई जोगे ने कहा तो ए मजबूरी दी ड्यूटी छड़ क्यों नहीं देंदा पहरेदार ने कहा की करा किसी वेले किसी ने कहा सी मैं तेरे जोगा ते मैं भी कह बैठा जे तू मेरे जोगा ते मैं तेरे जोगा ओदी बांह फड़ी सी बांह फड़े दी लाज पे रखदा सी भाई मेरा चित्त नहीं करदा पर मजबूर चंगा भाई तेरी मर्जी। भाई जोगा सिंह ਇਥੋਂ ਕਰਾਇਆ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰ ਪਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਸਿੰਗ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਉਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਈ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀ

0: हो गया, रोई जाओ उतने तक, जितने तक तेरे अंदर हम मैं पानी बन के खाथानी बाहर नहीं आ जाती। जोगिया की कहना महाराज मैं भूल गया। हजूर कहने लगे जोगिया भूल गए आप के पाचा। हजूर कहने लगे बख्तिया खुशी भाई जी, क्योंकि जोगा बख्शिया गया तुम्हें भी बख्शे गए, आप सारे बख्शे गए हैं। प्यार आखो धन श्री गुरु गोविंद जी का। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर सर्व को सूरी चढ़ता है उन्हें फिर नहीं देखना है मैली जगह है या चंगी है गंदी मंदी था सूरी रोशनी देता है। गुरु की मेहर हर थान से जाती है, अच थोड़े उत्ते भी पता है गुरु तहू ही दाता मिली। जोगा वक्त आ गया पर भाई जोगा से ने कहा महाराज एक शंका छोटा जहा रह गया है। अदूर कहने लगे बार कद महाराज रेसवा दे चवारे
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

सपना होए दारू सपना होए दारू पापड़े धोए नानको खाने बेनती चिन सच पर।

मैं अजिहे सुख तो की लेना है जेड़ा सुख नालो वधेरे दुख लेके आई जा रहा है। सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो ना मांगया भावे। वो सुख मेनू अच्छा नहीं लगता जेड़ा वधेरे दुख लेके आ रहा है। ते गुरु साहब भी अपनी बाणी दी इस पंक्ति दे विच ए कहंदे ने, ऐ संतो ऐसे पुरुषों जिन्हां दे पास के इनसाइट है, ऐसे महापुरुषों ऐसे सतपुरुषों मेरे उत्ते बख्शिश करो। कोई मैनू अजिहा सुख दसो, सो सुख मोको संत बतावो। कोई मैनू ऐसी कंफर्ट दसो जिस दे नाल तृष्णा बूझे मन तृप्तावो। आओ सारे रल के प्यार दे नाल इस पंक्ति नू गाइए। अगां फिर अज दी इस विचार चों असी गुरबाणी दे व्यू पॉइंट दे विचों ए लभीए कि सुख किस तरह मिलता है। आओ सारे रल के गाइए।

चिंतित ही दिसे सब कोई। अंतर चिंता नैनी सुखी नैन साड़े सुखे पे हैं, अखा साड़ियां कुछ लैक कर रही हैं, अखा दे विच जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं है, अखा दे विच कोई लाइफ दा जूस नहीं है, ड्राई है। अंतर चिंता नैनी सुखी मूल ना उतरे पोख, अंदर हंगरी हैं थोड़ा है। कहंदे हैं फरीदा चिंत खटोला, जिस मंजी उते असी बैठे हां ओ चिंता दी मंजी है, वाण दुख अते जिस वाण दे नाल ओ मंजी बुनी गई है ओ है दुख। चिंता दी मंजी वाण दुख दे वाण दे नाल बुनी है, बिरह रब दा जो बिरह है विछोड़ा है ओ है बिछावन लेफ, ओ है उस दा बिस्तरा अते उस दे उते ओढ़न वाली जो कुल्ट है, ओढ़ना जो है। चिंत खटोला वाण दुख बिरह बिछावन लेफ, इस किस्म दा जीवन है। कहंदे हन ए हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वे, आ साड़ी जिंदगी दी जो तस्वीर है, ए साड़ी जिंदगी दी पिक्चर है। ते आज दी जिंदगी दे विचों असी सब जो इनर पीस है, जो इनर कंफर्ट है, जो रियल कंफर्ट है, उस दी असी सारे तलाश कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी ने अपने इस शब्द दे विच ये दस्या है कि ऐ संतो मैनू को अजिहा सुख दसो जिस दे नाल मन दी तृष्णा बुझ जाए अते मन नू टिका आ जाए। कहंदे हन इंसान इस नू हासिल करन दे वास्ते बाकी जो कुछ भी करदा है कोशिश, उस दा जिक्र महाराज ने इस शब्द कीता है। उस दे मैं मुक्सर जिहा आप नू फिर परिचय करा दें। कहंदे हन बहु रंग माया, बहुत रंगा वाली जो माया है, मैमन ऑफ मैनी कलर्स डिसीव्स पीपल इन मैनी मैनी वेज, बहुरंग माया बहु विध पेखी, कलम कागज सियानप लेखी। कहंदे हन जिन्हां ने बहुत सारिया इंजीनियस राइटिंग्स लिखिया अपने कलमां दे नाल कागजां दे उत्ते, कहंदे मैं देखिया ओ भी अंदरों अशांत हन। महर मलूक होए देखिया खान, बादशाह मलूक अते देखे हन जेड़े लोग खान बने हन, अजेहे जो लोग हन कहंदे हन मैं उन्हां नू भी देखिया है। तां ते नाही मन तृप्तान असवारी, चोहा चंदन सेज सुंदर नारी, ये तमाम ऐशो इशरत दा समान जो भोगदे हन। कहंदे हन नट नाटक अखारे गया, जेड़े दिन रात पार्टीज दे विच ही रहंदे हन, जेड़े दिन रात सेलिब्रेशन दे विच ही रहंदे हन, जेड़े दिन रात एंटरटेनमेंट ही करते रहते हैं। कहते हैं उन्हें अखाड़िया दे विच भी मैं दुनिया बैठी देखी है, ता मैं मन संतोख ना पाया, उत्थे भी किसी नु संतोख नहीं मिलता। अगे कहते हैं तखत सभा मंदन डोलीचे, बादशाह देखे हैं जो बड़े बड़े तख्ता होते, बहुत खूबसूरत जो दुलीचिया होते विराजमान होते हैं, बहुत खूबसूरत सभावां दे विच मंडलां दे विच जो बैठते हैं, सुंदर मेवे सगल मेवे खान अनेक किस्म दे जो पदार्थ जिन्हां दे पास मेवे आधन, सुंदर बागीचे जिन्हां दे जो बगीचे दुनिया देखण नू तरसदी है। हजूर कहंदे हन अखेड़ बिरथ राजन की लीला, राजियां महाराजियां दे जिन्हां दे पास शौक हन, हॉबीज हन, शिकार करना जिन्हां दा शौक है, अजियां खेडां दे विच हमेशा गलतान रहण वाले लोग भी कहंदे हन मन ना सुहेला, कहंदे हन मन ना सुहेला परपंच हीला, उना दे मन भी जो सुहेले नहीं हन। ए सारा कुछ देखने तो बाद गुरु साहब अपना जो तजर्बा दसदे हन अते उपदेश दिंदे हन।

अखी कुदरत अखां दे नाल कुदरत दे दीदार करो, कन्नी बाणी कन्ना दे नाल उस दे विस्माद नाद नूं श्रवण करो, मुख आखण सच नाम ते जबान तो फिर उसकी प्रशंसा करो। सो सारे सारे शब्द दी जो विचार दा सिट्टा ए निकलदा है, गुरु साहब ने कहा है अनेकां किस्म दे नाल इंसान अपने आप नूं सुखी होण दी जो कोशिश करदे हन, लेकिन सारे शब्द दी जो विचार इत्थे टिकी रही है कि किसे तरह भी मन सुहेला नहीं हुंदा। गुरु साहब फिर अगां चल के हुण दसदे हन, आओ अगली पंक्ति वल नूं वधीए कि सुहेला सुखी किस तरह हुंदा है। ओ कहंदे हन असी अपनी जिंदगी दे विच सोचदे हां कि साडे पास धन आए ते असी सुहेले हो जावांगे, सुखी हो जावांगे, लेकिन तजर्बियां तो यह पता लगता है कि साडा ए धन पदार्थ से बहुत ज्यादा गिनती इकट्ठा कर सकता है लेकिन सुख नहीं इकट्ठा करता। फिर वो केड़ा धन सानू चाहिए जिस दे नाल असी सुख भी हासिल कर सकी, उसका अगली पंक्ति जिक्र करते हैं। कहते हैं

फिर कहते हैं इत तन पै भुख लथी जिन्हां दे पल्ले ए तन आ जांदा है अकाल पुरख वाहिगुरु की सिफत सलाह दा अकाल पुरख वाहिगुरु जिन्हां दे हिरदे दे विच आ जांदा है जिन्हां दी सुरत दे विच आ जांदा है जिन्हां दे वचनां दे विच आ जांदा है जिन्हां दे जीवन दे विच आ जांदा है कहिंदे हन उन्हां दे मुतलक इत तन पै भुख लथी सुख वसिया मन आए उन्हां नूं बाहर सुख इकट्ठा नहीं करना पैंदा सुख उन्हां दे अंदर आ जांदा है साडा कीर्तन इत्थों शुरू होया सी एक सवाल तों कि सौ सुख मोको संत बतावे ओ संतो ओ मैनूं सुख दसो किस तरह हासिल हुंदा है तो उन्हां ने कहा सुख तुहाडे आत्मा दे अंदर तुहाडे अपने अंदर आ जांदा है सुख बाहर नहीं है कंफर्ट हैज नथिंग टू डू विद एक्सटर्नल पोजेशन मटीरियल It is purely a state of mind.

कहते हैं वाहेगुरु कहता है इंसान अगर तू मेरा बन जाए तो सारा जगत तेरा बन जाए, अगर तू मेरा ना बने तो भावे सारे संसार नू अपना दोस्त बना अपना मित्र बना, कोई भी मित्र नहीं बनता। वो कहते हैं

निषाद बदल गया ना, माल कौश का निषाद नीवा, चंद्र कौश का निषाद उपरला, इस चंद्र कौश और सूरज कौश।

एक ताल दो ताल हुण तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हुण तीन ताल जो कब कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब में रव रे आ राव जोग आ।

ताल, दो ताल, तीन ताल, चार ताल और चार ही राग, माल कौश, चंद्र कौश, सूर्य कौश, जोग कौश, चार ही पंक्तियां, बिसर गई सब तात्पराई, जब ते सत्संग में पाई, ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई, जो कब तीनों सो भल मान्यो, इस मत साधु ते पाई, सब में रव रहे प्रभु कह, देख देख नानक भिखसाई। आप जी ने श्रवण किया है तराना, साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने, ये तराना जेड़ा है ये अनकौमा जेड़िया ने गैर सिखा चुका के रख देने वाली बात है। मैं इतने बहुत वड़े वड़े गंधर्व गायक कट्ठे हुए सी, कह लगे जी सिखा तो राग गाना ही नहीं आता, ऐसा साढ़े सामने ना क्या कहते, असल वार तो ला लेंगे पर राग गाना नहीं आता। मैं क्या जी राग साढ़े सतगुरां ने गाए, कहते गाए तो सुनाओ,

नक्षत्र वीणा का स्वर है दीन, तिरना जो है यह सितार का स्वर है, तिरना तिरना सितार में वजद और दीन जोड़ा है वचित्र वीणा में वजद, यह सागा के दर्शन कराए ने।

तो मेरा भाव कहता है कि जेडे प्रचलित शब्द ने आप पढ़ लें जेडे औखे शब्द ने वह भी राजी सिंह पढ़ने चाहिए ने। हां जी, तो राजी सिंह इधर भी ध्यान देना चाहिए, संतान श्रवण करना चाहिए, राजी सिंह गायन करना चाहिए। आनंद साहब जोड़ा है वह मर्यादा किमें पढ़न की जोटियां की धारण पढ़ लेने ना, यह मर्यादा नहीं। मर्यादा है राग रामकली दे विच और तीन घर के पढ़ना, घर तीजा रामकली, तो उसका स्वरूप श्रवण करो जिमें साहेब आप आनंद साहब पढ़ते होंगे रामकली राग।

भूजल पर घर तो भागे घर शबद तेरे घर तो भाग वाले वंश बद वाले वंश भागे वंश बद तेरे घर तो भाग घर तो भागे हंस को सुनवास खेते गाल गंत कुमार और घर बताया सुनो से राम हर कृष्ण अनहद अनहद अनहद नंद सरोवर पाटी और सरोवर संताप पुत्र गुरु

ब्राह्मण गुरु पाणी पिता माता धर्म महत दिवस रात दुदाई दया खेले आइया बुलाइया करमी आप अपनी सारे जपो जिन्नी नाम मशक्कत नानक